0: सर कर सकते हो सर। जो आप मर्जी तो आप क्या रहे हैं रोने एक्सीडेंट दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे नाइट
1: अब ये कर रहे हैं
0: सर। इट्स गोइंग टू बी एट द पोस्ट ऑफिस 2849 विस्कॉन्सिन स्ट्रीट कॉल्ड बाय द पोस्टमास्टर नो वीडियो फुटेज अ व्हीकल टुक आउट द